पई। जो एह कथा सुने अर गावे, दुख पाप तेह निकट न आवे। बिसन बहुत किए फल होई, आद ब्याद शिवै सकै न कोई। समुद सतर सह पचावन, हाड़ वदी प्रथम सुख दामन।

हाथ दी दार दाते अंतर के बोलना जी पंजा प्यारियां चौहान साहब जादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमडिठ कीता तिना प्यारियां सच्चारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी जिन्हां सिंह सिंघणियां ने धर्म हेत सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिद्ध केसां सवासां संग निभाया तिनां समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी प्रिथ मैं सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै चेतावन का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छा रियायत देग तेग फते ब्रित की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी सिखा दा मान नीवा मत उची मत पत दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो श्री ननकाणा साहिब समूह गुरुधामां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे मान नितानियां दे तान नियोटियां दी ओढ़ने आसरियां दे आसरा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जिया दे हजूर सोदार रहरा साहब दे पाठ दी अरदास है जी अखरवादा घाटा भुल चुक मुआफ करनी पढ़ी सुनी बाणी दा भाव आईया संगतां दे दासरिया दे हिरदे ते विसाउणा सब दियां दर हाजरियां ते फुल पेटावां प्रवान करनियां धरो करो नाम दान चढ़दी कला दी दात बख्शनी परिवार में सुख शांति कित कमाइया विच वादे पौने अरदास बेनती है जी संगतां वल्लों शरण कौर दे जन्मदिन ते परिवार वल्लों आप दा शुकराना करदे अरदास बेनती कृपा करनी मेरा प्रयाथ रखना चढ़दियां कला बख्शनियां बाबा जगतार सिंह उन्हां दी तंदरुस्ती वास्ते संगतां वल्लों अरदास बेनती है कृपा करनी पातशाह जी तंदरुस्तियां चढ़दियां कला बख्शनियां इस वेले बख्शियां खजानियां विचों कड़ा प्रसाद दी देग सज के हाजिर है करी पाक साल सोज पितरा हुन लाभ भोग हर राय आप जी दा सीध प्रसाद जो छके नाम वाहिगुरु जपे श्रीमुख वाग दी बख्श करो सही प्यारे मेल जना मिले आम दा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा आग्या भई अकाल की तबै चलायो सब सिखण को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की जो प्रभु को मिल बोच है

चल रही लड़ी बार कथा विचार नाल जुड़ांगे। अज दा पवित्र शब्द 416 अंक ते सुशोभित है, जो कि धन गुरु नानक देव जी महाराज जी की पवित्र रसना तो उच्चारण किया होया है, जिस विच गुरमुखां दी ते मनमुखां दी महाराज जी ने स्थिति का वर्णन किया है।

बोलना जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी कहो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेतावै चेतावन का सदका सर्व सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान साहु दान प्रसाद दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा मान नीवा मत उची मत पात दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जीओ श्री ननकाणा साहिब। समूह गुरु धामां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। निमाणियां दे मान नितानियां दे ताम नियोटियां दी ओढ़ने आसरियां दे आसरा। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती है जी। आप जीआं ने कृपा रहमत कीती है। आप जी दी पावन हजूरी विच शाम दे सुंदर दीवान सजे हन। सजे हुए दीवाना विच गुरबाणी दी कथा विचार कीर्तन छे पौड़ियां आनंद साहिब दा जाप होया है। कृपा करनी जी समुचियां सेवावां निभाउंदिआं होइआं भुल जुग दी खिमा बख्शना। पढ़ी सुनी बाणी कीर्तन कथा दा भाव आईआं संगतां दे हिरदे ते वसाउणा। सब दीआं दर हाजरीआं तिल फुल भेटावां प्रवान करनीआं। दरो करो नाम दान चढ़दी कला दी दाद बख्शनी। परिवारां विच सुख शांति कारोबारां विच वाधे करने जेलां विच बंद गुरसिखां दी रिहाई चढ़दी कला करनी। अपने प्यारे खालसा पंथ दी चढ़दी कला करनी। बख्शियां खजानिआं विचों कड़ा प्रसाद देख सज के हाजिर है। करी पाक साल सोज पवित्रा हुन लाभ भोग हर राय। आप जी दा सीत प्रसाद ज्यो छके नाम वाहिगुरु जपे। श्री मुख वाग दी बख्श करो सही प्यारे मेल जना मिलिया दा नाम चितावे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्या पही अकाल की तवै चलायो पंथ। सब सिखण को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की। जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में राज करेगा खालसा।

तारिका मंडल जनक मोती धूपमल आलो पवन चवरो करे सगल बनराई फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शिव दुबा जंत पेरी रहाओ सहस्तव नैन नन नैन है तो एक सहस मूरत नना एक तो ही सहस पद विमल नन एक पद गंध गंध विन सहस्तव गंध इवचल तुमोही सब मैं ज्योत ज्योत है सोए तिस दे चानन सब है चानन होए गुरु साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत सुपावै सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंदिनो मोहे अहि प्यासा कृपा जल देहे नानक सारंको होए जाते तेरे नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भौ परया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुरु पाया मन हले मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डंडौत पुन वड्डा है रहाओ साकत हर साधने जानिया तिन अंतर हम मैं कंडा है ज्यों ज्यों चलै चुबै दुख पावह जम काल सह सिर डंडा है हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनोहो मेरे मीता संत टहल की बेला एहा खाड़ चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला औद कटै दिन सिरे नारे मन गुरमिल काज सवारे रहाओ एहो संसार विकार संसेह में तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए बे आवै एहो रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाज हो हर गुरते मन ही बसेरा निज घर महल पा

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

सूदुग दंसम दृष्टिता नानक पापुन्नै लेपा निर्धन गो धंधेरो नाव निथामे गो नाव तेरा था निमाने गो प्रभ तेरो मान सकल कटा गो देवो दान कर्ण कराम हर स्वामी सकल कटा के अंतर जामी अपनी गत में जानू आपे आपन संगा पर बराते तुमरी उस तुम ते हुए दान कबर न जान गोये सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्मर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उदम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम में उद्दम पला हर का राम जप हो जी सदा सगल बानी।

रतन त्या कौडी संग रचा है, सा छोड़ झूठ संग मचा है, जो छड़ना सो अस्त्र कर माना है, जो होवन सो दूर पराना है, छोड़ जाए जिसका श्रम कराए, संग सहाई तुस पर हराए, चंदन लेप उतारे तो हे गर्द प्रीत पसम संग होए, अंधकूप में पतत बिकराल, नानक काढ़ लियो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक बचारा करे दिन रात, बाहर पेख अंतर मल पाया, शब्द नाय कश करे छपाया, बाहर ज्ञान ध्यान शनान, अंतर व्यापे लोभ समान, अंतर अगन बार तन स्वाहा, गल पात्र कैसे तरे यथा, जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक ते जन सह समात, सुनंदा कैसे मार्ग पावे, कर गए लेहु ओढ़ निभावे, कहाँ बुझार्थ बुझे डोरा, निष्किय तो समझे पूरा, कहाँ विसनपद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुर भंग, कै पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तूहा उस गवन, करतार करुणा में दीन बेनती कराए, नानक तुमरी कृपा तराए, संग सहाई सो आवे ना चीत, जो बैराई ताश्य प्रीत, बलुआ कै कर पीतर बसे, अणद केल माया रंग रसाय, धड़कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूडे चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ द्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लो अपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो बिन सब तेरी रास, तुम आत पिता हम बारग तेरे, तुमरी कृपा मैं सूख नेरे, कोई ना जाने तुमरा अंत, उच्चे ते उच्चा भगवंत, सगल समगरी तुमरा

बिन सिमरन दिन रैन ब्रिथा बिहाय मेघ मिनाजो खेती जाए गोविंद भजन बिन ब्रिथे सब काम ज्यो किरपन के निरार धाम तन तन ते जन जेकट बस्यो हर नाउ नानक ताके।

साधक संग न कबूता वह साधक संग सदा सुख पाव सा संग बस अगोचर है साधु कै संग आजारो सह साधक संग बसे थान उच साधु कै संग महल बहुच साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै गुरबान साधक संग सब कुल उदारे सा संग साजन मीत कुटम निस्तार साधु कै संग सो धन पाव जस धनते सब को बल साव सा संग धर्म राय करे सेवा साधक संग सो बासुर देवा साधु कै संग पाप लायन सा संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्वथान गम नानक साधक संग सफल जनम साधक संग नहीं कशकाल दर्शन भेड़ होत निहाल साधक संग कलुकत हराय साधक संग नरक पर हराय साधक संग इहा उहा सोहिला सा संग बिछर धर मेला जो चै सोई फल पावे साधक संग ना बिरथा जावे पार ब्रह्म साधर दवस नान उदरा साध सुंदर सै साधक संग सनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साधक संग ना मंते बिसराय साध संग सर पर निस्तराय

ब्रह्म ज्ञानी का धीरज एक जो वसुदा गहू खोदय गहू चंदन लेब। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव नानक जो पाप का सह सुभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैला लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कह मनो प्रकाश जैसे धरु प्रयाकाश। ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सतर समान। ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान।

ब्रह्मज्ञानी का दर्श बटभागी पाइय, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्मज्ञानी को खोजे में असर नानक, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्मज्ञानी का सगल मन माहे, ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश।

प्रभगिया के आत्मेतावे जीवन मुक्त सौ कहावे तैसा हरक तैसा शोक सदा अनंत नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी तैसा मृत तैसी भी खाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वर्ताई साई जो वर्ताए साई जुगत।

राष्ट्रपति संत के दुख ने आर जा घटे, संत के दुख न जमते नहीं छुटे, संत के दुख न सुख सब जाए, संत के दुख नरक में पाए, संत के दुख न मत होए मलीन, संत के दुख न सो बात हीन, संत के हाथे को रखे ना कोए, संत के दुख न धान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे नानक, संत संग निंदक भी तरह, संत का दुखन ते मुख पवै, संतन का दुखन काग जो लवै, संतन का दुखन सर्व जोन पाए, संत का दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन का दुखन दर्शना मैं जलाए, संत का दुखन सब गोशलाए, संत का दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच नी जाए, संत दुखी का धाम को नाहे, नानक संत भावता वे भी गत पाहे, संत का

शरण चलो मार्गो बिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म सर्वनर कथा हर दरगे नानक भूजल मथा बटभागी ते जन जग माहे सदा सदा हर गे गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से तनबंध कनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एक वो एक एक बशाने इतुतकी हो सो जी जान नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिने निरंजन जान्या गुर प्रसाद अपने आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै सा संग हर हर जस गायत सर्व रोग त्योहार जिंद रहत अंधिन

अंधकार दीपक प्रकाशे नानक परमो दुख तैते नासे तपत माए ठांड बरताई अनंत व्याह दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पहुजुगा निर्भय बसे सगल व्याध बनते खै नसे जिसका साधन कृपा धारी सासंग जप नाम मुरारी तित पाई चुके ब्रह्म गमन सुन नानक हर हरदास श्रवण निर्गुण आप सरगुण भी ओहि कला धार दिन सगली मोही अपने चरित प्रभा बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग भय प्रगा साध गय संग रच रचना बनी गल धारी अन

ब्रह्म संजना के हृदय सब धर्म संजना सुने सो भजन सर्व्यापी राम संग रचन जिन जाता तुसकी रहत सत भजन साधु सब कहत जो जो ऐ सोई सुख माने करन कराम हर प्रभ जाने अंदर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत की आ सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पात तिस भाविता करे विस्तार तिस भाविता एक अंकार अनकला लखी ना जाय जिस भाव सलय मिलाए कमन निकट कमन कही है दूरा पिया पा भरपूर अंतरगत जसाब जनाए नंद जना बुझाए सरभूता प्रतारा सर्वनैना पेखण हारा सगल समग्री जाका तना

ती करहो सा संग अगन सागर तरहो। हर तन के भर लियो भंडार, नान गुरपुरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, सा संग भाज परमानंद। नरक निवार उधारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो। चित चितवो नारायण एक, एक रूप जागे रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम सलोक साध के बचन, अमलीक लाल ए रतन। सुनत कमावत होत उदार, आप तरह लोके निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जागे मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहत बाजय, सुन सुन अंध करे प्रभु गाजय। प्रगटे गोपाल महंत के माथे, नानक उदरे तिन के साथे। सरनजोग सुन सरणी आए, कल कृपा प्रभु आप मिलाए। मिट गए बैर भय सबरेन, अमृत नाम सा संग लैन। सुप्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण हुई सेवक की सेव। आल जंगाल बिकार ते रहते, राम नाम सुंदर सुना कहते। कर प्रसाद दया प्रभु धारी, नानक निभि खेप हमारी। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकागर चीत। सुखमनी सहज गोविंद गुरु नाम, जिस मन बसे सोत निधान। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सबते ऊज पाए स्थान, बहर न होवे आमन जान। हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम सांत रिद नाम निद, बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध। विद्या ताप जो प्रभु ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सबके मध्य सकल ते उदास। सुंदर चतुर तत् गेता, समदर्शी एक दृष्टेता। ए फल तिस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। यह निधान जपै मन कोए, सब जुग मै तागी गत होए। गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत गए मन विश्राम। कोट पराध सा संग मिटै, संत कृपाते जमते छुटै। जाके मस्तक कर्म प्रभाए, साध सर नानक ते आए। जिस मन

हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म न कोय, नानक हुक्मे जे बुझे ताहु मैं कह न कोई।

जाई जे जुग चारे आर जा हुरद सुनी होए नमकना विच जानिए नाल चल सब कोय चंगा नाव रखाई कै जसकर जागले जे तिस नदर ना आवै ता बात ना पुछै के किटा।

तो सदा सलामत निरंकार असंख्य नाम असंख्य थाव आगम आगम असंख्य लो असंख्य सिर पार होए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण

संगे नमस्तिंग आगम नमस्त सतरम नमस्तिंग जलाश्रय नमस्त निराश्रय नमस्तिंग अजाते नमस्तिंग अपाते नमस्तिंग अमजबे नमस्त सत अजब अदे सिंह अदे से नम सिंह पे से नम सिंहताम नम सिर्भाम नम स्रव काले नम स्रव दयाले नम स्रव रूपे नम स्रव पूपे नम स्रव खापे नम स्रव थापे नम स्रव काले नम स्रव पाले नम सतदेव।

छंद अगाध्य अबाध्य आनंद स्वरूप नम श्रम मान सती निधान नम स्वृनाथ नम स्वंग परमाथे नम स्वंग गंजे नम स्वंग पंजे नम स्वंग काले नम स्वंग पाले नम स्रव देशे

सिद्धय कृपालिंग स्वरूप गोकर्म पूर्णासे सदा सर्वदार सदिंग्न वासे चरपड़ चंता परसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे अखल जोगे अचल पोगे अचल राजे अटल साजे अखल तर्म का लख कर्म।

संत प्रथा कथते किया छिज देश है किया भिज भेस है किया गंध कर्म है किया पंज भरम है किया भिज लोक है किया दित शोक है किया तुत भरने के बबूल करने के राजंग प्रवाह के तरमंग तुदाय के शोक भरने के सर्व भरने के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्र के बरमंग स्वरूप है के अनुपानुप के आदि देव है के आप अपेव है

के कारण कुन दह करो जी दहन दह के राजक रहे मैं के कर्मं करे मैं के सर्वं कलिया के सर्वं दली है के सर्वत्र मानी है के सर्वत्र दानी है के सर्वत्र गौन है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजा है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काद है के सर्वत्र राजा है केशवत्र शोक है केशवत्र पोख है केशवत्र त्राण है केशवत्र प्राण है केशवत्र देश है केशवत्र पेश है केशवत्र मानी है सदैव प्रधानी है केशवत्र जापी है केशवत्र थापी है केशवत्र पान है केशवत्र मान है केशवत्र इंद्र है केशवत्र चंद्र है केशवंग कलिम है के परम फहीम है के आकल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेश सलाम है सली कुमत है गनी मुल सिख गरीब परस्त है।

चर्पण छंता प्रसाद सर्वगांता सर्वंगंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता

अकलं कर्ता सर्वकृतं कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा सर्वात्मा है आत्म बस है दस के बाद जास है।

आकाश अगंजा पंज लख पख अकाल दयाल अलेख पेख नाम अकाम अगाटा अनाथे परमाथे अजो नियम नरागे नरंगे न रूप न रेखे अकरम अपरम गंजे अलेखे भुजंग प्रया छंद नमत्र प्रणाम समत्र प्रणा से अगंजल नाम।

सूर सरार धन सुध सदाय देख संत समान एकमति के सारे देखो देख रहे हो मत को ना देखो प्राणपति के श्री भगवान के पाए कृपा उते करते बने करते के माते में तंग जर जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कोट पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के पू पले बेद न्यावशिष न जात बिचारे।

है। हुकम मन्ने हो गुरु के रागा बहु सच्ची बाणी कह नानक सुन हो संत हो कथिवा कथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किन न पाया

जिन जगत उपाया कह नानक तू सदा गम है तेरा अंत ना पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीने सच्चा मनुसाया जी जन सब तो दे पाए कुवे।

सच सोहला सच्चा कर गावे अनसुनो बड़पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोज संताप तरे सुनी सच्ची वाणी संत साधन पे सुरस्य पूरे गुरते जानी सुनते पनी

पहला विश्वास दाद विश्वास वेद विश्वास जीव विश्वास भेद विश्वास रूप विश्वास रंग विश्वास नाके फिरे जंत विश्वास पौन विश्वास पानी विश्वास अग्नि खेडे उड़ानी विश्वास धरती विश्वास खानी विश्वास साथ लगे प्राणी विश्वास सजोग विश्वास विजोग विश्वास पुख विश्वास भोग विश्वास सिफत विश्वास सलाम विश्वास उजड़ विश्वास रा विश्वास

0: सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगट आग सुनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम विचार है जिन सच्चे स्याओ चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।
1: गुरमुख प्यारे

पौड़ी तुरकर्म जना को दुध पाया था तिनी कसम तिहाया हे ना जनता के वस किच ना ही दुध वेकी जगत उपाया एक नानू तुम्हें लहे का बहुत खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आ बुझाया।

चौक शब्दम ज्ञान शब्दम वेद शब्दम ब्राह्मण है, खत्री शब्दम सूर शब्दम शूद्र शब्दम प्राकृत है, सर्व शब्दम एक शब्दम जे को जाने पे ओ नानकता का दास है सोई निरंजन।

0: पुस्तक संध्या वादन सिल पूज सबगल समाधन मुख चूट में भूखण सारंग त्रैपाल ते हाल विचारंग गल माला तिर लीलाटंग दो तोती वस्त्र कपाटंग जय जानस ब्रह्मं करम सफोकट ने चो कर्म कहो नानक ने चो त्यावे बिन सतगुर वाट ना पावे
1: औड़ी कपड़ो सुहावना छ

अंदर फैल। अड़सठ तीरज नावे उतरे नाही मैं, जिन पट अंदर बार गुदड़ते भले संसार, तिन्ने हो लगा रब से ती देख।

हाय हरमत स्नोगलियो में जो पहदूना खाए कसमे करे बराबरी फिर गैंत अंदर पाए वजो गवाए अगला मोहे मोह पाना खाए जिस दाते तक आवना तिस कहिए शाबाश नान हुकुम ना चले ना।

ठाकुर ऊच पगमाना मूक उचर शास्त्र खाट पिंग गिरन चढ़ जाए अंधलख बदरो सुने जो काल कृपा कराए कहां बुद्ध प्रभ तुष हमारी वर्ण सके महिमा जो तिहारी हम न सक

0: बलिया
1: केसर पत्र मान्य केसर पत्र धान्य
0: केसर पत्र गौण केसर पत्र पौन
1: केसर पत्र देश केसर पत्र पेशा
0: केसर पत्र राज केसर पत्र साज
1: केसर पत्र दीन केसर पत्र लीन
0: केसर पत्र जाहो केसर पत्र पाहो
1: केसर पत्र देश केसर पत्र पेशा
0: केसर पत्र काल केसर पत्र पाल
1: केसर पत्र हंता केसर पत्र गंता
0: केसर पत्र पेखी केसर पत्र पेखी
1: केसर पत्र काज केसर पत्र राज
0: केसर पत्र सोख केसर पत्र भोख
1: केसर पत्र त्राण केसर पत्र प्राण
0: केसर पत्र देश केसर पत्र पेश
1: केसर पत्र मान्य केसर सदावन प्रधान्य
0: केसर पत्र जापिया केसर पत्र थापिया

0: अपर्म है, कर्म है, नाथ है, जगत है,
1: जय है, पह है, भूत है, अदूत है,
0: अनाश है, उदास है, तंद है, बंद है,
1: बंद है, अभक्त है, विरक्त है,
0: अनाश है,
1: प्रकाश है,
0: विचित्त है, सुनिंद है।

0: तो प्रसाद सोई एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाह दसवीं सरावग सुध समूह सिदान के देख फिर कर जोग जती के
1: सूर सराधन सुध सिद्धांतिक संत समूह अनेक मति के
0: सारे ही देश को देख रहे हो मत क्यों ना देखत प्राण पति के
1: श्री भगवान की पाई कृपा हो ते एक रति बिन एक रति के
0: माते मतंग जरे जर संग नूप उतंग सुरंग सवारे
1: कोत तरंग करंग सेव पूत कौन के गौन को जात नवारे
0: पारी पुजान के पूपली बदनियावत शीश न जात बिचारे
1: इते पे तो कहा पे पूपत अंत को नागे ही पाए पिदारे
0: जीत फ्रे सब देश सान को बांजर टोल मेर डांग नगारे
1: गुजत गोड़ गजान के सुंदर हिंसित ही है राज हजारे
0: पूत पवेख भगवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे
1: श्री पत श्री भगवान वजे बिन बात को अंत के ताम सुधारे
0: तीरथ नान दे आदम दान सो संजम ने मन एक सिखे
1: वेद पुराण कतेब करान जनी जवान
0: पौन हार जती जतार सुबह सुब चार हजार के देखे
1: श्री भगवान बजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लेखे
0: सोध सुध स्वाद ग्रंथ दवा सो सार सनादर जान लेंगे थोर रीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे
1: श्रीपद श्री भगवान कृपा में त्याग हान दान लेंगे
0: वीर पार बड़े बरियार बिछाड़े सार की थार पछैया
1: तोर देश मलेंद्र मवासन माते जान के मान मलिया
0: करे गरान को तोरन हार सो बातन ही चुक चार लोइया
1: साहिब श्री सबको सिरनायक जाचक नेक सो एक दवैया
0: दानव देव फणेंद्र ने साचर पूत पवेक भगवान जी पेंगे
1: जीव जिते जब मैं थम मैं पल ही पर मैं सब थाप थपेंगे
0: उन प्रतापन बाद जी आतन पापन के बे ही पूंज कहेंगे
1: सास समूह प्रसन्न करे जसन हस्त बल लोक छपेंगे
0: मानव इंद्र की जिंद्र ने रात जौन त्रिलोक को राज करेंगे
1: कोट स्नान रजादक दान नेक सोमवर साज भरेंगे
0: ब्रह्म ही सर्व सचिपत अंत सहजम फास भरेंगे
1: जेना श्रीपत के प्रसन्न कफेना फेना ते करेंगे
0: कहा पे हो जो दो लोचन मुंद के बैठ रहे हो भक्तियान लगायो
1: नाथ करे ओलियो सास मंदर लोक के ऊपर लोक गवायो
0: बैस के ओपिख्यान सो बैठ के ऐसी ऐसे सो बैस बिठायो
1: साच कौन से ले उस बैज प्रेम के तिन ही प्रपायो
0: कहुले पान पूछ तरी अवसर कहुले लिंग रे लटकायो
1: कहुले त्योर रवाची दे सामैस को पसाको सीस नवायो
0: कौ गुटान को पूजत है पस कौ मृतान को पूजनतायो
1: कूर के और जीव सभी जग श्री भगवान को प्रेम न पायो
0: कूर के और जो सभी जग श्री भगवान को प्रेम न पायो
1: वाहिगुरु जी चौबे साहेब एक श्री वाहेगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवि उबास बेनती चौबे हमरे करो हाथे रचा
0: पूर्ण होई चित की इच्छा
1: तब चरणन वर्ण है हमारा
0: अपना जान करो पित पारा
1: हमरे दोस्त सब तुम कावो
0: आपादे मोए बचावो
1: सुखी वसे मोरो प्रवारा
0: सेवक सिख सबे करता रा
1: मोर छानज कर दे करिए
0: सबे रण को आसंगरिए
1: पूर्ण होए हमारी आशा
0: तोर पहचान की रे प्यासा
1: हमें चाहत कोई अवर्णा त्याओ
0: जो बचाओ सुतम ते पाओ
1: सेवक सिखा मारे तारिया

0: रास मेरी मन मंजारा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जप हो जी हो लाहा खट हो दहाड़ी एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा कह नानक हर रास मेरी मन हो वनजारा ए रसना तू अनरास राच रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए होर ते कित हर रस पलै न पाए हर रस पाए पलै पिए पिए हर रस बहुड़ न तृष्णा लागे आए एहो हर रस करमी पाइए सतगुर मिले जिस आए कह नानक होर अनरास सब वीर विसरै जा हर बसे मन आए हे श्रीरा मेरिया हर तम मह जोत रखी ता तू जग मह आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया हर आपे माता आपे पिता जिन जीउ पाए जगत दिखाया गुर प्रसाद दी बुझया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक सृष्ट का मूल रचया जोत राखी ता तू जग मह आया मन चाओ पया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनया हर गाओ मंगल नित सखिय सोग दुख न व्यापे गुर चरण लागे तिन सुभागे अपना पेर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम को कह नानक करण कारण जोगो ए श्री राम मेरिया इस जग
1: तू कर्म
0: कमाया तो दुसिया जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचया सो जन हर मन वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया कह नानक एहो शरीर परवान होआ जिन सतगुर सिव चित लाया।

कहु नानक सुन रे मना सिमरत काहे न राम। सब सुख दाता राम है दूसर नाहे न कोय। कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होय।

हर भाणा गुर पाया मीरार प्रभ करे सा वास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ भाणा पावे।